यत्र मनस्फूर्ति तत्र तत्र जगत्त्रयम्। यत्र यत्र मनो नास्ति तत्र तत्र न किञ्चन। यत्र यत्र मनस्फूर्ति तत्र तत्र

वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य